0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
4: tufaan hai, har jeet ki pehchaan hai.
1: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: लाइक अस ऑन FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery. दिल को है आराम.
3: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
4: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अज़्मे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान.
7: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
10: हमने अपना कुछ 3 बार मौत देखा.
11: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
12: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया.
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247.
14: 1-800-875-365.
15: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
17: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
16: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
16: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
15: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
18: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
5: एक दुनी दो दो दुनी चार.
7: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
6: And agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
0: And

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।

0: कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: And agar aap hai in drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
2: And

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
0: And

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365 247365
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: कूल किंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: FM 247 365 FM 247 365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800 55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 24/7/365

0: Nadari. This public service message is brought to you by FM 100.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
3: Let's
4: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

Yes, everybody. तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, क्योंकि जो बाकायदगी से आगाज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ होता है। और अब जबकि आगाज हो ही चुका है तो ऑब्वियसली आपको बताएंगे तरीका कार के कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीका कार को जल्दी से फॉलो करें, मैसेज करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें, अपनी हाजिरी लगाएं, हमें बताएं कि जी इस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं, इस वक्त आप घर में हैं, इस वक्त आप रास्ते में हैं, इस वक्त आप ट्रैफिक में फंसे हैं, इस वक्त आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक पे जाने का प्लान है तो पिकनिक पे जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे अभी तो वीक डे है, वीक डे पे कौन पिकनिक पे जाता है। बिल्कुल भाई, वीक डे में ना बहुत सारे लोग जाना इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि रश कम मिलता है। तो मे बी कोई पिकनिक पे जा रहा हो, लेकिन पिकनिक पे जाते हुए ना आई नो दिस कि जो कोस्टर या हाईएस्ट भर के जा रही होती है पिकनिक पे एंजॉय करने के लिए, वहां पर तो भाई इस वक्त तेज आवाज में गाने चल रहे होते हैं, वहां पे तो लोग अलग ही एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो ये तो मैं नहीं जानती कि क्या सूरत हाल है। तो कौन कहां से इस वक्त हमें सुन रहा है, जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेज का क्योंकि करने को है बहुत सारी बातें जो होंगी आपके साथ। तो चले जी एक और ट्रैक को शामिल करते हैं और इसके बाद वापस आकर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।

ओके तो सज्जाद अली की आवाज को हमने शामिल कर लिया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से ना मैंने सज्जाद अली की आवाज को शामिल नहीं किया है. वैसे सज्जाद अली की आवाज ऐसी आवाज है जिसे हम रोजाना की बुनियाद पर मोस्टली शामिल करते हैं, और अगर मैं भूले भटके भूल जाऊं कि सज्जाद अली की आवाज को हमने शामिल नहीं किया है तो कोई ना कोई लिस्नर ना हमें बता देता है कि जी सज्जाद अली की आवाज शामिल कर लें, कोई ट्रैक जरूर सज्जाद अली का ऐड करें. तो सज्जाद अली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी तौर पर बनते ही बनते हैं, क्योंकि अगर मैं भी मिस्टेकनली भूल जाऊं उनके ट्रैक को शामिल करना तो जो हमारे लिसनर्स हैं ना वो हमें जरूर याद दहानी करा देते हैं कि जी सज्जाद अली का कोई ट्रैक आपने शामिल नहीं किया है. तो भाई अभी तो आगाज हुआ है, अख्तिताम में बहुत वक्त बाकी है, यानी कि बहुत सारे सिंगर्स को सुना जाएगा, ये बात तो तय है. ऑल राइट जी, सो आज है 23 ऑफ जून, सो हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी सालगिरह है या फिर कोई और स्पेशल डे है आपकी जिंदगी का तो आपको मुबारक हो. इसी के साथ साथ आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी. आजकल ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग डेज मनाए जा भी रहे हैं, नहीं भी जा रहे होते हैं तो जरूर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑल तो कोई बहुत ज्यादा खास दिन. तो भाई आज नेशनल पोरेज डे मनाया जा रहा है, जो कि बहुत हेल्दी और अच्छी चीज है अगर आप पोरेज अपने जो है वो नाश्ते में लेते हैं. सो ये एक बहुत अच्छी आई मस्ट से कि गजा है जिससे आपका पेट एक तो भरा भरा भी रहता है और उसी के साथ साथ ये गजा आपके लिए बड़ी फायदेमंद भी है. तो अगर आप अपने नाश्ते में ओट्स लेते हैं या पोरेज लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है जो आपको जरूर लेनी चाहिए. ऑल दो कि पराठे, तली हुई रोटी, ये सब तो हम लेते ही हैं, आई थिंक ये ज्यादा हम शौक से ले रहे होते हैं, या फिर डबल रोटी भी ले रहे होते हैं, डबल ओटी यानी कि ब्रेड, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है. लेकिन बहुत सारे लोग अगर एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो दे मोस्टली हैव लाइक पोरेज एंड ओट्स इन देयर ब्रेकफास्ट. तो भाई जो लोग लेते हैं उनके लिए इस दिन को हम कह सकते हैं कि जी आज आपके लिए दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का भी दिन मनाए जा रहे होते हैं. ऑल राइट, इसी के साथ साथ आज और कौन से दिन मनाए जा रहे हैं? आज पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जा रहा है. ऑल राइट, तो आपने देखा है कि जी हमारी सर्विस के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे लिए मौजूद होते हैं जो कि हमें सही से गाइड कर रहे होते हैं. देयर लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द रोड जो कि आप देखते हैं जो पब्लिक की सर्विस के लिए मौजूद होते हैं. तो भाई आज उनका दिन मनाया जा रहा है और उनके लिए भी एप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोजमर्रा नजर आते हैं, जो रोजमर्रा आपके काम आते हैं, जिनकी मौजूदगी से आपको बहुत सारे फवायद मिलते हैं, जिनकी मौजूदगी से आपके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, और वो कितने आपकी जिंदगी में फायदेमंद है ना, इस चीज का अंदाजा भी आपको बहुत टाइम बाद जाकर होता है. कब होता है? जब उनकी एब्सेंस में या जब वो काम आपको खुद करना पड़ता है तो तब आप रियलाइज करते हैं कि अरे हाँ यार, मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि इसकी वजह से ये काम हो जाता था. तो इसीलिए हर किसी के काम को जरूर अप्रिशिएट किया करें, बिकॉज तारीफ एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई डिजर्व करता है. तो कभी भी किसी की तारीफ करते वक्त ना कंजूसी ना करें और दिल को बड़ा रखें. फ्राइडे चैलेंज, इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ. तो कई मजा आएगा, विल बी राइट बैक. आप जल्दी से मैसेज करें और बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा.

0: चार मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी एवरीबॉडी, सो आ चुके हैं हम वापस. ट्रैक भी आप लोगों ने सुन लिया है. हदीका कैनी की आवाज को आप लोग सुन रहे थे, उसी के साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है. तो भाई अगर बात की जाए बाहर के खाने की, तो बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं. लेकिन बाहर के खाना में कुछ ऐसी अट्रैक्शन भी मौजूद है कि जिसे देख कर ना हम अपने आप पर काबू नहीं पा पाते और हम खा लेते हैं. और हम ये सोच रहे होते हैं चलो भाई आज खा लिया, अब कल से नहीं खाएंगे, या चलो कोई बात नहीं, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ भी कह लें, बाहर के खाने में बहुत अट्रैक्शन है. हमें पता भी है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है. ये सब कुछ जानते बूझते बिना हम बाहर का खाना बड़ी हंसी खुशी खा रहे होते हैं. और क्या आप ये बात जानते हैं कि नई रिसर्च के तहत ये पता लगाया गया है कि बाहर का खाना एडिक्शन है. ये बात तो तय है ही, लेकिन इसी की वजह से जो ये यंग जनरेशन है जो कि अर्निंग करने के बावजूद भी सेविंग नहीं कर पा रही है, और सेविंग ना करने के पीछे जो अहम वजह है वो है बाहर का खाना. क्योंकि पैसे बच ही नहीं पाते इस वजह से, क्योंकि बाहर के खाने पर ये पैसे जो हैं वो खर्च कर दिए जाते हैं कि चलो यहां से कुछ मंगवा लो, कहीं से लंच मंगवा लिया, कहीं से कुछ रात के लिए कुछ मंगवा लिया. कोई अच्छा रात में भी एक तो रात होती है डिनर वाली, और उसके बाद एक रात वो होती है जो कि मिड नाइट क्रेविंग्स होती हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा है. और आजकल से मुराद ये कि कई दिनों से हम ही कह सकते हैं कि मिड नाइट क्रेविंग्स का ना जरा फोकस ज्यादा किया जा रहा है. अब तो भाई जब अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं ना, तो आप जो है वो चार वक्त के खाने का सामान ले रहे होते हैं, जिसमें स्पेशली सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और फिर मिड नाइट क्रेविंग्स. जी हाँ, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ चीजों की खरीदारी की जा रही होती है. चिप्स के पैकेट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, नूडल्स के पैकेट हैं. अच्छा, नूडल्स में भी बड़ा कॉम्पिटिशन आ चुका है कि जी एक तो आम इंस्टेंट नूडल्स मिला करते थे, लेकिन अब उन इंस्टेंट नूडल्स में भी जो है ना वो कोरियन नूडल्स का बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें से रैमन खरीदे जा रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा स्पाइसी हैं, उनमें कोई कोरियन टच है. और ये सारी चीजें हम रात में खाकर ना अब शॉपिंग हम तीन वक्त के खाने की नहीं बल्कि चार वक्त के खाने की खरीदारी कर रहे होते हैं. और नई रिसर्च ने इस बात का भी पता लगा लिया है कि जी हां, आजकल सेविंग नहीं हो पा रही है बाहर के खाने की वजह से. तो अगर ये बात आपसे पूछी जाए, आपसे जानी चाहिए कि क्या आप सेविंग करते हैं या नहीं, आप कोशिश ही नहीं कर पाते. बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी आदत होती है कि जी वो खर्चा भी कर रहे होते हैं लेकिन एक साइड पर सेविंग भी कर रहे होते हैं. एंड आई मस्ट से कि ऐसे लोग बहुत, एक तो मैं कहूंगी खुशनसीब है, और बहुत अच्छी आदत है ये कि आप जो है वो खर्चा तो कर रहे होते हैं लेकिन आप सेविंग जरूर करते हैं, बिकॉज सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम अपने लिसनर से जानेंगे क्या आप अच्छे हैं सेविंग करने में, या फिर यही बाहर का खाना, ये बाहर की चीजें आपको सेविंग करनी नहीं देती हैं. तो आप कितने अच्छे हैं सेविंग में हमें जरूर बताएं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, क्लियर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. और हमें जरूर बताएं कि जी आप सेविंग में कैसे हैं, अच्छे हैं, सेविंग कर लेते हैं या नहीं. भाई बड़ी खुजली रहती है हाथों में और पैसे खर्च हो जाते हैं, तो क्या सूरत हाल है भाई, ये हम आप ही की जुबानी जानेंगे. तो आपके मैसेज का कर रहे हैं इंतजार. और इससे पहले चलते हैं कदर ट्रैक की जाने, आपको देते हैं सोचने का मौका और वापस आकर जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं सेविंग में.

Yes, everybody. So, Aasim Azhar ke track ke saath hum aa chuke hain wapas. Aur bhai, Aasim Azhar is trending again everywhere. Kyunki bhai, Aasim Azhar ka ye track jo hai, wo sabko bahut hi zyada pasand aa raha hai. To sab log is track ko jo hai, wo on repeat sun rahe hain. Aur isi ke saath saath is track mein na, sabko ye bhi mehsoos hua hai ki ji, Hania Amir ki awaaz hai. Aur is wajah se na, ab waise to ye track acha hai hi, lekin Hania Amir ki awaaz ki wajah se na, ye track zyada trending karne laga. Aur bhai, phir har taraf Hania Amir ka zikr tha ki ji, is track mein jo hai, wo Hania Amir ki awaaz suni gayi hai. And everybody is so excited to know this. Lekin phir pata chala ki nahi, ye Hania Amir ki awaaz nahi hai. Lekin vaise agar is track ko suna jaye, to phir se bolo jo kaha ja raha hai, wo awaaz to bilkul Hania Amir ki lag rahi hai. तो भाई, आसिम अज़हर और हानिया आमिर का जो है, वो जब भी कोई नजर आते हैं साथ, या फिर कोई किसी ट्रैक में उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो पीपल इज सो हैप्पी टू सी देम टुगेदर. और बिल्कुल इस ट्रैक में भी ऐसे ही हुआ था कि जो हानिया आमिर की आवाज है, तो ये सुनकर जो फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए. लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि आसिम अज़हर इज वर्किंग सो नाइस, और उनके ट्रैक जो हैं वो आजकल सबके बड़े ही फेवरेट हैं. हम तो पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी ममालिक में भी ना बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. इस पर जो है वो रील्स बनाई जा रही हैं, इस पर डांस करके वीडियोज जो है वो पोस्ट की जा रही हैं, सेलिब्रिटीज भी इस ट्रैक को यूज कर रहे हैं. सो आई मस्ट से कि ये हम सबके लिए एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि खुशी होती है भाई जब पाकिस्तान इज ट्रेंडिंग एनीवेयर. तो ये बात तो है कि भाई, हमारा काम तो होता नहीं, बेहतरीन तरीन होता है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है. तो भाई, मजे आ जाता है ये सुनकर. और हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. हेलो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड. कहते हैं, ये भी कहते हैं, जी आई एम गुड. कहते हैं, ऑफिस से सुन रहे हैं, मौसम अब पहले से अच्छा है. कहते हैं, सेविंग में अच्छा ही हूं, खर्चा करने का दिल नहीं चाहता. हाँ, ये रशीद खान ने हमें पहले बताया था. मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये वाला दिल ना होना चाहिए, इनका खर्चा करने का ही दिल नहीं चाहता. सो दैट्स तो रियली रियली नाइस भाई. खर्चा करेंगे ही नहीं तो भाई, पैसे तो सेव होंगे ही होंगे. ऑल राइट जी. तो कहते हैं भाई, इनका तो खर्चा करने का दिल नहीं चाहता, यानी कि सेविंग करते हैं. लंच में इनकी अरवी गोश्त है. सुन ये रहे हैं हमें कराची से, कराची सिटी से ऑफिस से हमें सुन रहे हैं. लंच इन्होंने हमसे अपना शेयर कर लिया है, एंड दैट्स रियली नाइस. तो भाई, मुकम्मल मैसेज में रशीद खान ने अपनी तफसीलात हमें दे दी हैं, यानी कि आज हमने आपसे सवाल बेसिकली ये पूछा था कि भाई जो है वो आप सेविंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते. सो यू आर गुड एट सेविंग और नॉट, तो इसी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. आप भी सेविंग कर पाते हैं या नहीं, हमें जरूर बताएं. फिलहाल हम चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

0: the lunchtime special on the big one, FM 100.
1: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
2: Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: Midday break a blast.
3: Hello and assalamu alaikum, Pakistan. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. मैं आ चुकी हूँ वापस एक बार फिर से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारा और आपका साथ 12 से 2 के दरमियान होता है. तो जी हाँ, ये साथ कायम और दायम है. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल हो चुके हैं, एक घंटा आपके साथ गुजार लिया है और बस एक ही घंटा बचा है जो कि हम आपके साथ गुजार रहे हैं. तो कोशिश यह है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा बात हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपकी पसंद के ट्रैक्स को हम शामिल कर सकें और साथ ही साथ जो हमारा कंपलसरी सवाल है उस पर भी गुफ्तगू हो सके. सुबह ये बात तो तय है कि ये सब होगा, लेकिन प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत कुछ यूं होती है कि हम एक अदर ट्रैक अपने तमाम सुनने वालों को डेडिकेट करते हैं और ये रिवायत भी कई सालों से चलती आ रही है. इसके बाद जो है ना वो हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. तो बिल्कुल पहले आपको एक दफा बता देते हैं कि हमने आपसे सवाल क्या पूछा था. तो हमने आपसे सवाल आज ये पूछा था कि क्या आप सेविंग कर लेते हैं या नहीं, क्या आप सेविंग में अच्छे हैं या नहीं. ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमने पहले एक रिसर्च को डिस्कस किया और उसके बाद ये सवाल हमने आपसे जाना कि क्या आप सेविंग कर पाते हैं या नहीं. तो इसका जवाब देने के लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. जब तक हम चलते हैं अपनी रिवायत की जानिब, यानी कि एक अदर ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम.

0: या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
4: Join Fatima Khan.
3: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
4: Midday break a blast.
5: ओके तो भाई लंच का हमने आपसे पूछा था कि क्या पक रहा है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, तो हमें जरूर बताएं क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल आप सुन रहे हैं जिस पर हम लंच का जिक्र लाजमी तौर पर करते ही करते हैं, वरना हमारा प्रोग्राम अधूरा ही रह जाता है अगर लंच का जिक्र ना करें। तो इसे पूरा करने के लिए जिक्र लंच इज कम्पल्सरी। और हमारे पास मैसेज आया है जुनेद फ्रॉम रेंजर सिंथ थार पार्कर, कहते हैं आप ही कैसी हैं, आप ही हमारे लंच में दाल चना और दाल माश मिक्स बनती है, बहुत मजे की, कभी बॉर्डर के चक्कर लगे तो खाना सब खाने भूल जाएंगी। ओके दैट्स रियली नाइस कॉम्बिनेशन, यानी कि इन्होंने कहा है कि जी इसमें जो है वो दाल चना है और माश की दाल मिक्स बनती है तो ये बड़ी मजे की होगी। दालें मेरी वैसी बड़ी फेवरेट हैं और दालों में जो ये रद्दोबदल होता है या कोई ना कोई डिफरेंट रेसिपी से ट्राई की जा रही होती है ना, सो आई रियली लाइक इट। तो जरूर अगर मौका लगा, चक्कर लगा तो जरूर हम इसे ट्राई करेंगे। जुनेद फ्रॉम रेंजर्स सिंथर पार्कर से हमें मैसेज करते हैं। सुमेरा हमें कराची से मैसेज करती हैं, कहती हैं आप भी कैसी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहती हैं आज लंच में बीफ बिरयानी है जो मेरी बहुत फेवरेट है। ये तो सुमेरा आपने बेस्ट लंच अपना बता दिया है और बिरयानी तो ऐसी चीज है जो कि शायद ही कोई कहे कि उसकी फेवरेट नहीं है। बिरयानी मेरे लिए तो आई रियली लाइक बिरयानी, बल्कि आई लव बिरयानी, बट वो मैटर नहीं करता कि उसमें चिकन है, मटन है, बीफ है, कुछ भी है, बिकॉज मेरे लिए बिरयानी में जो चीज मैटर करती है ना वो है मसाले वाले चावल, लाइक मसाले वाली बिरयानी विद आलू। ओ माई गॉड, दिस इज द ओनली वन थिंग दैट आई लव सो मच। तो साथ में उसकी बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, जो भी हो, मैं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज आई लाइक बिरयानी विद आलू। और बिरयानी के शौकीन लोगों का भाई ये भी कहना है कि जो असल जायकेदार और मजेदार बिरयानी होती है ना वो बीफ बिरयानी ही होती है, जो कि भाई हमारी लिसनर सुमेरा की तो बड़ी फेवरेट है। क्या आपकी भी बीफ बिरयानी फेवरेट है या चिकन? तो अपनी पसंद की बिरयानी का भी आप बिल्कुल जिक्र कर सकते हैं। तो भाई ये तो हमारे लिसनर्स ने बताना शुरू कर दिया कि उनके लंच में क्या है, बाकी लोगों से भी जानते हैं। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। चलते हैं ट्रैक की जाने, फिर वापस आकर आपको बताते हैं मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल।

ओके जी, इस वीक ट्रैक के साथ हम आ चुके हैं वापस, जो कि आई एम श्योर कि आप सबका बड़ा फेवरेट होगा। और हम वापस आ चुके हैं और हमने कहा था कि जी जब हम वापस आएंगे तो जरा मौसम की ताज़तरीन सूरत हाल बताएंगे। तो शहर में आज भी मौसम मामूल के मुताबिक है। दर्जा हरारत जो है वो 34 से 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि इस वक्त देखा जाए तो कराची का दर्जा हरारत 34 है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 36 है। और समुद्री बादलों के बायस शाम या रात को कराची में कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। एंड दैट इज सो नाइस कि अबर आलूद मौसम चल रहा है, बादलों का आना जाना लगा हुआ है। ये जो बादलों की आंख में छोड़ी होती है ना, ये मौसम को बड़ा खूबसूरत कर देती है और धूप की शिद्दत को भी कम कर देती है। सो आजकल लकीली हम इन दिनों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं शहर कराची में। सो दैट इज सो नाइस। अब ये सिलसिला चलता रहे तो भाई मौसम का मजा जो है ना वो दुबाला हो जाता है, बिकॉज ये जो धूप है और ये जो अल्लाह भी बीच में जो कराची में गर्मी पड़ी थी तो लग रहा था कि आसमान से सारे बादल कहीं और शिफ्ट हो गए, और ऐसी ही सूरत हाल थी कि एक भी बादल जो था वो आसमान पर नजर ही नहीं आता था, क्योंकि हम लिटरली बादलों को ढूंढ रहे थे कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा ही आ जाए ताकि इस धूप की शिद्दत में कमी हो जाए। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अभी हम बड़े अच्छे मौसम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये सूरत हाल जो है वो एक तवील अरसे तक चलती रहे तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। सो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ साथ इस अच्छी खबर के साथ साथ हमें लगता है कि हमें एक अदर ट्रैक की जानब जाना चाहिए, तो चलें जी चलते हैं एक अदर ट्रैक की जानब।

0: ऑल राइट, तो भाई हमारा एक सवाल आज आप लोगों से ये था, ये तो भी लंच पर बात चल रही है, लेकिन उससे पहले हमारा सवाल आप लोगों से ये था कि क्या आप सेविंग करते हैं या आप सेविंग में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि नई रिसर्च तो ये कह रही है कि बाहर के खाने पीने की वजह से जो है वो आजकल लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप भी इस वजह से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बाहर का खाना हो या जो भी सिचुएशन हो, आप तो सेविंग करते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बड़ा जरूरी है, और ये अगर आपने अपनी नेचर सेट कर लिया है ना तो भाई बेस्ट कर लिया है, क्योंकि सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिसनर रशीद खान तो कहते हैं कि भाई उनका तो पैसे खर्च करने का दिल ही नहीं चाहता, वो अपनी ईदी को भी खर्च नहीं करते। बहुत दिनों तक हम जब भी जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई ईदी से क्या खरीदा है क्या किया, तो मेरे ख्याल से तो रशीद खान अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपने तो कई ईदियां जमा करके रखी होंगी। अच्छा वैसे ईदी की जहां तक बात है ना, तो ईदी जब भी हमें मिलने वाली होती है उससे पहले हम लोग हिसाब किताब तो लगा रहे होते हैं कि भाई कितने पैसे मिलेंगे, कितनी ईदी जमा होगी, इतने खाला देंगी, इतनी मामू देंगे, ये वाला हिसाब किताब हम लगा जरूर रहे होते हैं अलबत्ता, और उसी के साथ साथ हम ये भी प्लान करते हैं कि इस दफा ईदी जो है ना वो खाने पीने पर खर्च नहीं की जाएगी, इस दफा इससे कुछ लेंगे। लेकिन ये बातें हमेशा बस हम सोचते ही हैं और करते ही हैं और ऐसा कभी नहीं कर पाते, वो पैसे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और ईदी की खुशी कुछ ऐसी होती है कि वो भी बिल्कुल ऐसी होती है कि बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई ना बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, और ऐसे लग रहे होते हैं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी है तो इसीलिए उसको बड़ी हैप्पीली ना सब लोग खर्च कर रहे होते हैं, बिला वजह की चीजों पे भी खर्च कर देते हैं कि भाई चलो अब तो ये पैसे एक अदद एंजॉयमेंट है। तो वो वाली सेविंग ना मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। खैर आप सेविंग में कैसे हैं हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये हमारा आपसे आज का पूछे जाने वाला सवाल है। तो सवाल के जवाब का तो हम इंतजार कर ही रहे हैं। हमारे पास एक और मैसेज आया है, राबिया का ही आया है, कहती हैं आप ही कोशिश करती हूं सेविंग करने की लेकिन हो नहीं पाती। यही तो मसला है कि कोशिश तो बड़ी की जाती है लेकिन हो नहीं पाती, और यही सबसे बड़ा जो है ना वो मसला है जिंदगानी का कि कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोशिश भी रंग लाती है, तो कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको इसका सिला मिलेगा। तो चलते हैं ब्रेक की जाने, बढ़ाते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Cool King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365।
3: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
4: घर के अफराद और आमदनी में तवाजन
5: हमारी जिम्मेदारी है।
6: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: जी जनाब, और आज वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सैर कर रही हूँ। ये पुराने गानों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा वक्त, जो शायद देखा भी नहीं है, उस वक्त में एंटर हूँ और वो वक्त एंजॉय कर रही हूँ। मेरे साथ यकीनन आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, और क्यों ना करें। ये बात, ये आवाज, ये म्यूजिक, ये लिरिक्स और ये तमाम तर एनवायरमेंट ऐसा लग रहा है हमें पता नहीं कितनी सदी पीछे लेके चला गया। और कभी कभी बहुत पीछे जाना भी बहुत फायदेमंद होता है। जिस तरह हम अपने जहन की कैलकुलेशन में अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, कभी कभी हमें अपने पास्ट में जाना भी, जो हमें एनर्जी दे सके, हमें बेहतर कर सके, हमें आज के लिए तैयार कर सके, बहुत जरूरी होता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी जगहों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और बढ़ना भी चाहिए, आगे बढ़ने में ही कामयाबी है। लेकिन बहुत सारी चीजें इंसान की जरूरत है, उसको मेडिटेट करना, उससे भागना नहीं होता, उस जगह पे रहकर उन चीजों को फेस करना होता है, और यही इंसान की कामयाबी होती है। तो जनाब, आज बहुत सारी पुरानी बातों के साथ, बहुत सारे पुराने ट्रैक्स के साथ, पुराने म्यूजिक के साथ, पुरानी शायरी के साथ, पुराने सिंगर्स के साथ, मतलब वोकल भी इतना हसीन, इतना खूबसूरत है, सादा सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं कोई पॉलिश नहीं है, कोई बटरिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस हम सुन रहे हैं और जो कह रहे हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से कह रहे हैं और हमें सुनाई दिए जा रहे हैं। क्योंकि वाकई हम सिर्फ उन वक्तों में इन आवाजों को ही कैद कर चुके हैं अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशंस के लिए।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी जनाब, और हम बात कर रहे हैं आज पुरानी बातें कर रहे हैं, वो कानों में पड़ी हुई बातें कर रहे हैं, और ये खूबसूरत सी आवाज जो इस वक्त आपने समाप्त की, आपने सुनी, आपने आपकी हियरिंग से गुजरी है, बहुत ही जनाब बहुत ही खूबसूरत सी हमारी सिंगर महनाज जी की। और ये वो सिंगर्स हैं, ये वो हस्तियां हैं, नैयरा नूर हैं, महनाज जी हैं, और नूरजहां साहिबा हैं, और रूना लैला, मतलब लिस्ट और फ्लेवर और क्या ही बात है। और कहीं ये दूर रह गई हैं हमारी हमारी किताबों में, हमारे वक्त में कहीं दूर छुप गई हैं। आज इनको इनके सुन के, इन आवाजों से धूल हटा के ये पता चला है कि हर पुरानी चीज को संभाल के शायद हम इसलिए रख देते हैं, डर के हम इसलिए रख देते हैं कि वो चीजें, वो बातें जो हैं, वो हम उस तरह से उन्हें हैंडल और टैकल नहीं कर सकते। तो जनाब, अगर आपकी कोई भी चीज, आपकी कोई भी बात, आपके कोई भी मामला जो है, वह जिंदगी में काफी आप संभाल के डर के चल रहे हैं उनके साथ, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें संभालना ही चाहिए, वो ताल्लुकात हो, वो हालात हो, वो फाइनेंस हो, ताकि आप उनको देख सके, उनके दरमियान उनके मामलात को, उनको अपने आगे तक पहुंचा सकें, उनसे मैक्सिमम फायदा उठा सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हालात की बात नहीं है, आपके रिश्तों की बात नहीं है, हर उस चीज की बात है जो आपके लिए कीमती है। कीमती चीजों को संभाला जाता है, कीमती चीजों से फायदा उठाया जाता है, कीमती चीजों को तोड़ा नहीं जाता।

क्या बात है भाई, दिस इज कॉल्ड फ्लेवर ऑफ लैंग्वेजेस। और जहां हमें सब कुछ सुनने को मिलता है, जहां हमें सब कुछ महसूस करने को मिलता है, और जनाब वो है जनीना रेडियो वन एंड ओनली FM 100 पे। आप और मैं हम बात करते हैं हर उस बात पे जिस पे हम शायद कभी सोचते ही नहीं, शायद हम कंसीडर ही नहीं करते, शायद हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, शायद हम उसे वैल्यू ही नहीं देते। और जब हम इन सारी चीजों पे बात करते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिन्हें हम जबरदस्ती इग्नोर कर रहे थे। तो इग्नोर बिल्कुल करना चाहिए उन चीजों को जिससे जिंदगी में डिजास्टर आते हैं, जिनसे बेहतरी आती है, उन चीजों को तो कंसीडर करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, उन्हें कैलकुलेट करना चाहिए, जिंदगी को हल्का फुल्का बड़ा नरम सा रख के, नरम मिजाज में रख के गुजारना चाहिए। फिर आप देखिए क्या फल लेती है ये लाइफ आपको। और हम बात कर रहे थे होप की, तो होप कभी भी किसी भी गलत चीज की नहीं होती कि यार कभी किसी ने ना सुना ना किया ना कहा कि भाई होप रखो, बेहतर तरीके से गलत हो ही जाएगा। गलत लिमिटेड होता है और जो बेहतरी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जनाब हर लम्हे कोशिश करें कि इस जो इस बेहतरी को आप एग्जीक्यूट करें, इस बेहतरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर काम करें, इसको ज्यादा से ज्यादा चांस दें अपनी जिंदगी को कि आपकी जिंदगी जो है बेहतरी वाला एलिमेंट जो है वो लाए। हाँ, टास्क जरूर है, यकीनन है, और क्यों नहीं होंगे, जब आप बेहतरी कर रहे हैं तो टास्क ही टास्क है। लेकिन उन चीजों से, उन बातों से निकलें जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्फाजी तौर पर आपने, मैंने सुना और देखा है,

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: Cool King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
4: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahe, muhtaat rahe. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
3: MCB 1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Likhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
4: And

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
4: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग, बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनाम 2500।
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनाम।
6: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
8: MCB 1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB 1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
9: This program is brought to you by
10: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
5: And agar aap hain in drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. And

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: tufaan hai.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
3: कूल किंग, बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है,
6: हर जीत की पहचान है। कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
9: Let's celebrate
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
3: कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
6: मिशन में परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या FEMRA को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको FEMRA की जानिब से पेश किया जा रहा है।
9: FM 24/7 365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
10: Only music, no RJ talk.
9: This is FM 100.
11: Come on.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja,
1: Phoenix laga aur bhul ja. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: कूल किंग. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
3: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
4: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है. हर
5: जीत की पहचान है. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
7: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
9: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
8: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
8: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
7: आइए वेट से आगे का सोचें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
12: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
13: facebook.com/fm247365

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: facebook.com/fm247365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is

0: से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
6: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
7: Like us on facebook.com/fm247365.

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: FM 24/7 365 FM 100
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: facebook.com/fm247365 fm247365

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मान है। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मसले

0: रास्ते में बैठ जाऊंगा, मैं इनके बाएं जाने पर बैठ जाऊंगा, मैं इनके आगे से हमला आवरूंगा, मैं इनके पुश से हमला आवरूंगा, गोया के शश जिहाद से मैं इन पे हमला करूंगा। और ये पहला मरहला था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहलत दी कि तुम करना चाहो अपनी तमाम कुव्वतें आजमा लो, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे वो तुम्हारे काबू में नहीं है। तो एक तरफ तो यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो रहमत नजर आती है कि सवाल उससे किया गया और करने वाला वो है कि जिसने नाफरमानी की है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके सवाल का जवाब इस बात में दिया कि तुम अपनी सी कोशिश कर लो, मेरे बंदे मेरे रास्ते से नहीं बैठेंगे। तो ये जो सवाल का जवाब है, इसको किसी शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि इबलीस का सवाल भी करता नहीं जो रद, इबलीस का सवाल भी करता नहीं जो रद, क्या क्या तमाम खल्क पे उसकी अता नहीं। कि सवाल करने वाला इबलीस था, नाफरमान है, लेकिन उसने सवाल किया, अल्लाह ताला ने वो भी उसको अता कर दिया। तो अगर हम मांगेंगे, अल्लाह के मानने वाले उससे मांगेंगे, तो उसको क्या कुछ नहीं मिल सकता।
1: बेशक।
0: तो इबलीस ने सरकशी की, तो पहला इस्तियारा जो है वो सरकशी का, वो इबलीस बना, शैतान बना, उसके मुकाबले में ताबेदारी का, फरमा बरदारी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की पासदारी करने का जो इस्तियारा था वो आदम अलैहिस्सलाम की जात थी। तो अब दो इस्तियारे वजूद में आ गए, खैर और शर के। खैर है आदम यानी कि इंसानियत के जद्दे आला, और शर है शैतान, जिसकी दरमियान अब ये मुकाबला चलता रहेगा। इंसानियत के आगाज से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो इसको इकबाल ने कहा कि सतेजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। अब बात हो रही है आदम अलैहि सलाम की, लेकिन इकबाल ने कहा कि अजल से ताइम रोज है, तो आदम अलैहि सलाम जिस तरह जद्दे आला है, तो हुजूर अलैहि सलातो तस्लीम खातमुल अंबिया है, तो उनकी जात गोया के अंबिया इकराम की तरफ से, और यहां पे बूलहब जो है वो इस्तियारा बना शैतान की नुमाइंदगी करने वाला। तो ये जो सरकशी शुरू हुई, तो पहला आदम और इबलीस, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जमाना, जहां मुकाबले पे आपको नजर आएगा नमरूद। तो ये भी दो खैर और शर के इस्तियारे हुए कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम खैर के नुमाइंदा हैं और नमरूद जो है वो शर की अलामत है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया नजर आएगा, और उसमें आपको नजर आएगा कि आगे फिरौन मौजूद है, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम खैर की अलामत है और जो शर की अलामत है वो फिरौन है, उसकी कुव्वतें हैं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना आ जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सरापा खैर हैं और खैरुल वरा हैं, खैरुल बशर हैं, और जितने अलकाबात आपकी जात के लिए जिक्र किए जाएं वो कम है कि हम आपकी तारीफ व सना बयान नहीं कर सकते। तो वो खैर का इस्तियारा है, सरापा खैर है, और उनके मुकाबले में अबू जहल भी है और तमाम कुफारे मक्का और इस तरह से, लेकिन अबू जहल के जानने के बावजूद हक को छुपाने वाला, इसलिए वो अपनी तमाम तर दानिश, अकलमंदी, जहानत और मुआशरती मकाम के बावजूद वो अबू जहल कहलाया, और यानी कि जहालत का बाप, ऐसा जाहिल कि जो सरतासर जहल की अलामत है, सरतासर शर की अलामत बन गया। फिर अब ज़ाते रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ऐसा इस्तियारा वजूद में आता है कि तारीख इंसानियत में फिर वो हमेशा के लिए हवाले के तौर पर इस्तेमाल होने लगा कि खैर की अलामत बने इमाम अली मकाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और शर की अलामत बना यजीद। तो अब उस वक्त से लेके आज तक और ता कयाम कयामत, जब भी शर की बात होगी तो उसके लिए जो इस्तियारा इस्तेमाल होगा वो यजीद का नाम इस्तेमाल होगा, और जो खैर की बात होगी तो खैर के लिए इस्तियारा हजरत इमाम आली मकाम की जाते गिरामी होगी, क्योंकि सबात व हिम्मत का इस्तियारा अब नाम है तुम्हारा। तो ये इमाम आली मकाम का एक की अजमत है, उनका मर्तबा है कि पिछले सारे इस्तियारे बरहक, पिछली सारी अलामतें उसी तरह मौजूद, लेकिन अब तक कयाम कयामत जो चीज हमेशा याद रखी जाएगी वो किसी कौम में हो, किसी मुआशरत में हो, किसी खित्ते के अंदर हो, वहां की मकामी रिवायतों के साथ साथ उनको यजीद व हुसैन ये जो तस्किरा होगा और खैर और शर की ये जो दो अलामतें हैं इसका जिक्र जरूर होगा।
1: चले गुफ्तगू को जारी रखेंगे। माशाल्लाह जकरिया शेख अशरफी साहब भी पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और एक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तो फिर हमदे बारी ताला से जो है जकरिया साहब की एंट्री भी होगी माशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात FM 100 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on Facebook.com/FM247365.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.
1: کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. یہ پروگرام یقیناً آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں FM 100 پاکستان پر. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو سٹریمنگ آپ کو بتائیں روزانہ، میں آپ کو بتاتا ہوں روزانہ آپ سب ہمارے ساتھ ہوتے بھی ہیں. اور اگر آج پہلی بار آپ سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یا تو فیس بک پر آپ موجود ہیں تو وہاں میرے پیج پر، میری آئی ڈی پر آئیں گے، وہاں لنک موجود ہے، آپ لنک کلک کریں گے، یا پھر یوٹیوب پر جا کر آپ لکھیں گے MAKSHGTV لکھیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب. جی جناب، تو حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں.
6: جی بالکل.
1: بسم اللہ.

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।